0: कैसा है तू?
1: तू सेटल हो गया?
2: मॉम कहाँ है?
0: काम कैसा चल रहा है?
2: मॉम ठीक है या कुछ हुआ है?
0: मॉम ठीक है तेरी,
1: घर पे है।
2: तो फोन क्यों किया?
0: फोन क्यों किया मतलब? ये पूछने के लिए तू ठीक है या नहीं?
2: नहीं भी होता तो क्या कर लेते आप?
3: बड़ा बदतमीज है तू, तेरा हाल पूछने के लिए फोन कर रहा हूँ
4: और तू अपने बाप से टेढ़े मुंह बात कर रहे हैं।
3: ऐसा क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? क्रिश
4: क्रिश हेलो।